0: Adex, yes.
1: Okay.
2: How is it?
0: I think this is really good.
3: This lassi shop has been standing for 64 years. A tribute to Lahori's thirst for the Punjab region's most beloved drink. Some of the locals here even refer to it as white beer.
4: What is lassi and what is it made of?
5: Yogurt, milk,
6: milk,
5: sugar,
6: sugar,
5: ice,
6: and
5: that together.
6: That's okay.
5: Must okay.
4: Why is lassi so popular here?
5: Yeah. ये लाहौर का कल्चर है कि नाश्ता जो मर्जी करे उससे पहले लस्सी पीनी है पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में पहले पीते आ रहे हैं
4: राइट
5: पंजाबी
4: राइट
5: इंडिया पाकिस्तान अंग्रेज दौर ब्रिटिश दौर
3: एंड द प्राइस फॉर गेटिंग दिस होस्टिंग जॉब वेल मेकिंग लस्सीज फॉर द क्रू सर्व्ड बाय योर्स ट्रू
4: चीयर्स